हसमुख मंडालिया के स्वर में गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम ये चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग भाटियार में ख्याल गायन. आज की कलाकार हैं मीता हालदर. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Bhatiyar. Our artist is Meeta Haldar. Accompanying her on the tabla is Pinaki Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी मीता हल्दर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग भैरवी में सरोद वादन। आज के कलाकार हैं परमंथ मोहन टैगोर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुरजीत साहा।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग भाटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज मीता हल्दर। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज पिनाकी चक्रवर्ती। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sarod recital. Listen to the sarod in the rag Bhairavi. Our artist is Paramantha Mohan Tagore. Accompanying him on the tabla is Surajit Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरवी में सरोद वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे परमंत मोहन टैगोर, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुरजीत साहा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Bhairavi. Our artist was Paramantha Mohan Tagore. Accompanying him on the tabla was Surajit Saha. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बांसुरी वादन. कलाकार हैं पंडित रूपक कुलकर्णी. सर्वप्रथम आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मारवा. विलंबित और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है.
2: लिसन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित रूपक कुलकर्णी प्रेजेंटिंग राग मारवा विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू एक ताल.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। पंडित रूपक कुलकर्णी से बांसुरी पर आप सुन रहे थे राग मारवा। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित रूपक कुलकर्णी प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन, जिसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़ झाला, मध्यलयगत मत ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू राग मारवा ऑन फ्लूट बाय पंडित रूपक कुलकर्णी। Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhoot Phadke. Continuing the concert, now listen to Rag Yaman, in which you will listen to Alap Jod Jhala. Madhyalaygat said to Mattal and Drutgat said to Teen Tal.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित रूपक कुलकर्णी का बांसुरी वादन। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल by Pandit Rupak Kulkarni. Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhut Fadke. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है कुमुद दीवान का गायन. पहले सुनिए खमाज ठुमरी. बोल हैं अब न बजाओ श्याम बांसुरिया. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज अ रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय कुमुद दीवान. फर्स्ट लिसन टू अ खमाज ठुमरी रिसाइटल. द वर्ड्स आर अब ना बजाओ श्याम बांसुरिया. She is accompanied by Vinod Pathak on the tabla, on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami, and on harmonium by Ashok Kumar.

अभी आप सुन रहे थे खमाज ठुमरी और अब सुनिए मिश्र नट ठुमरी। बोल हैं श्याम बिना चैन ना आवे। तबले पर आपकी सती की

0: यह विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ खमाज ठुमरी रिसाइटल एंड नाउ लिसन टू मिश्र नट ठुमरी। द वर्ड्स आर शाम बिना चैन ना आवे। शी इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन द तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमुद दीवान गाया दादरा, बोल हैं आया कर कह दो सांवरिया से।
1: इन द एंड लिसन टू अ वोकल रेंडिशन इन दादरा बाय कुमुद दीवान। द वर्ड्स आर आया कर कह दो सांवरिया से।

0: अभी आप कुमुद दीवान का गाया दारा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन दादरा बाय कुमुद दीवान, अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: है ना वो।
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद फारूख लतीफ का सारंगी वादन। आइए राग गोरख कल्याण आलाप के पश्चात द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सारंग रिसाइटल बाय उस्ताद फारूख लतीफ। लिसन टू राग गोरख कल्याण इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग गोरख कल्याण। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद फारूख लतीफ अब सारंगी पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग मेघ। आलाप के पश्चात मध्यलय गत एक ताल में निबद्ध और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग गोरख कल्याण। यू आर लिसनिंग ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूख लतीफ। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वॉज पंडित राजेंद्र अंतरकर। कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उस्ताद फारूख लतीफ प्रेजेंट राग मेघ। आलाप फॉलोड बाय मध्यलय गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: ये था राग मेघ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद फारूक लतीफ का सारंगी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अजीत पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंटी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वाज राग मेघ। With that, we conclude Sarangi recital of Ustad Farooq Latif. Accompanied him on tabla was Ajit Pathak. This was the contribution of AI Mumbai.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मारू बिहाग और राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं यज्ञ सेनी मजूमदार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं बाबू वर्धन. यज्ञ सेनी मजूमदार अपने गायन का आरंभ राग मारू बिहाग में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल. कलाकार यज्ञ सेनी मजूमदार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in the rag Maru Behag. Our artist this evening is Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar and on the harmonium is Babu Bardhan. Listen now to Khayal in the rag Maru Behag, our artist, Yagnaseni Mazumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी यज्ञसेनी मजुमदार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशी सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे बाबू वर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज यज्ञसेनी मजुमदार। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम वाज बाबू वर्धन। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है माधुरी मट्टू का गाया राग कामोद. आप सबसे पहले राग कामोद में मध्यलय में ख्याल प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल हैं रुद बसंत सखी मोमन भावत जो कि तीन ताल में निबद्ध है. तत्पश्चात आप दादरा प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल है नजर लग जाइए मोरे ललन को.

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे माधुरी मट्टो का गाया दादरा। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर की गाई ठुमरी, राग भैरवी पर आधारित यह ठुमरी दीपचंदी ताल में निबद्ध है। बोल है अब न बोलो मुझसे श्याम।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी शंकर की गाई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर की गाई ठुमरी, जिसके बोल है अबके सावन घर आना।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की गाई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया एक गजल जिसके बोल है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर का गाया गजल पत्ता पत्ता बूटा बूटा। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन. कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सारंगी रेसाइटल बाय सरदार खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. The accompaniment has been provided by Ram Swaroop Ratonia on the tabla.

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन, कलाकार थे सरदार खां, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: म्यूजिक चैनल।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी। बोल हैं कौन गली गयो श्याम। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय विदुषी सविता देवी। She is accompanied by Akhtar Hasan on tabla, Kamal Ahmed on sarangi, and Ballu Khan on harmonium. First listen to Thumri in Rag Mishra Khamaj. The words are, Kaun Gali Gayo Sham?

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए दादरा, बोल हैं बिकल जिया होए रे। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र खमाज बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर बिकल जिया होए रे।

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया दादरा सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए कजरी। बोल हैं तरसल जियारा हमार। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू दादरा बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू कजरी। द वर्ड्स आर तरसल जियारा हमार। शी इज अकंपनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी and Ballu Khan on harmonium.

0: अभी आपने विदुषी सविता देवी की गाई कजरी सुनी, और लीजिए अब सुनिए झूला। बोल हैं सिया संग झूले बगिया में राम ललना। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने, और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू कजरी, नाउ लिसन टू झूला। द वर्ड्स आर सिया संग झूले बगिया में राम ललना।

0: अभी आप सुन रहे थे सविता देवी की आवाज में ये झूला। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू झूला बाय विदुषी सविता देवी। शी वॉज अकम्पनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी एंड बल्लू खान ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH, India Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।